0: हुँदो रहेछ।
1: साथै जय विश्वकर्मा ग्रिल स्टिल एन्ड आल्मुनियम उद्योग, मोबाइल 9846614438।
2: प्रोप्राइटर दीपक गैरे, ओम फर्निचर एन्ड फर्निसिङ उद्योग, शोरूम
1: ब्यास 3 दुर्गा मन्दिर लाइन मेन रोड दमौली,
2: फर्निचर उद्योग
1: ब्यास 11 मुसे खोला।

Worldlink festivity offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थहरू लागू होने छिटो बनेगई Worldlink।